0: ये खबरें एनएच केवल जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। अमरीकी और ईरानी मुजाकरात कार सालिसों के साथ बातचीत के लिए कतर में हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि दोनों फरीक बिलमुशाफा बातचीत करेंगे। एक अमरीकी अहदेदार ने एनएचके को बताया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी से मुलाकात करेंगे। अहदेदार ने बताया कि अमरीकी और ईरानी वफूद बुध को कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग बातचीत करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि उनके मुल्क का वफद कतरी सालिसों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि वो मुफाहमत की याददाश्त के कुछ हिस्सों बशमूल ईरान के मुंजमद असासों के इजरा पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर भी जोर दिया कि अगले चंद दिनों में अमरीकी फरीक के साथ किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के हवाले से दबाव बढ़ाने के एक हिस्से के तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में पैदा होने वाले कुछ बच्चों के लिए खुदकार पैदाइशी हक के शहरियत खत्म करने की कोशिश की थी। ताहम अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया है। अदालत ने मंगल के रोज अपने फैसले में लिखा कि शहरियत के हक का इतलाक अमरीका में पैदा होने वाले तमाम बच्चों पर यकसां होता है, चाहे उनके वालदैन मुल्क में गैर कानूनी तौर पर या आर्जी तौर पर ही मौजूद क्यों ना हों। जापान की वजारत माहौलियात ने रीछों की तादाद का ज्यादा दुरुस्त अंदाजा लगाने के लिए खुदकार कैमरों का इस्तेमाल करते हुए यकसां सर्वे का तरीका शुरू किया है। ये इकदाम इस जानवर के हमलों से हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद के तनाजुर में सामने आया है। अब तक मुख्तलिफ खित्तों में सर्वे के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं, जिनमें फंदों में पाए जाने वाले बालों का तजिया करना और शिकारियों से पहाड़ों में रीछ के देखे जाने के बारे में पूछना शामिल हैं। सर्वे के औकात और तवातर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करते थे। वजारत ने मंगल के रोज शुमाली जापान के तोहोक खित्ते के तमाम 6 प्रीफेक्चरों आओमोरी, अकीता, इवाते, यामागाता, मियागी, फुकुशिमा और निगाता के कुछ हिस्सों में कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वजारत के अहलकारों को सेंदाई शहर के एक जंगल में एक दरख्त पर कैमरा लगाते और उसके सेंसरों को एडजस्ट करते हुए देखा गया। उन्होंने शहद भी चारे के तौर पर वहां रखा। एशियाई काले रीछों की तादाद का अंदाजा उन्हें गिनकर लगाया जाएगा, जिनकी शनाख्त कैमरों के जरिए ली गई फुटेज में उनके सीने के मुनफरिद निशानात से की जा सकती है। रवा माली साल में यह सर्वे अक्टूबर के आसपास तक जारी रहेगा। वजारत ने रीछ के मस्कनों के मुताबिक सर्वे के इलाकों को 6 ब्लॉक्स में तकसीम किया है। जंगलात और शहरी इलाकों में कुल तकरीबन 800 कैमरे लगाए जाएंगे। वजारत अगले साल मार्च में नतायज जारी करने का इरादा रखती है। मंसूबे के मुताबिक आइंदा 4 वर्षों में मुल्क भर के उन तमाम इलाकों का सर्वे किया जाएगा जहां रीछ पाए जाते हैं। वजारत के एक अहलकार ने कहा कि वो रीछ की आबादी का दुरुस्त तयन करने और इस सर्वे के नतायज का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करने के लिए पुरुम्मीद हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में कितने रीछों को पकड़ने की जरूरत है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापानी वजीर आजम ताकायची सनाए ने आज बुध के रोज से नई दिल्ली का 3 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। वो जुमेरात को अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। और जापान में तवज्जो से देखे जाने वाले एक कारोबारी सर्वे से पता चलता है कि बड़े मसनूआत साजों के कारोबारी एतमाद में मुसलसल 5वें सेमाही में बेहतरी आई है। ये बेहतरी तजियाकारों के इन खदशात के बावजूद हुई है कि मशरक़ वस्ता का तनाज़ा कारोबारी रुझान को ख़राब कर देगा। और जापान ने रवानगी टैक्स 1000 येन से बढ़ाकर 3000 येन या तकरीबन $18 कर दिया है, जो बुध से नाफिजुल अमल हो गया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है nhk.jp/urdu।